0: एल नवे एक मकु आ अडे बीटे
1: चोली के पीछे क्या है चोली के पीछे
0: आ इहु सासे
2: यही तुगे याली विदाने मगा में का मिहिंगे देनी है
0: भाई लवता की नुनी में वाह कतके ए वाह कता मिहारु आ अडका आरोहकाय एफोरिया ए जोश किंगुस्तिनी मुलिंग एहिं दुनिया का
3: दिवाली ऐसा क्या वाइट तू जाऊन उठना बिठना लाऊन ये की तू तेरे भाई के राडे नहीं देखा तू इधर कच्चे तू
0: हाँ वो अधे रिमिक्स की बदले नो एक हम को लवे के नस्ते आ देरु में कोमे हो मत वही के मिंदरु दे जहार रिपीट अंगार दो हो गेरे दिहे जहर अदि बुद्ध दो हो गेरे बार जहर
4: नॉक नॉक तेरा बाप पाया
5: वर्जन 2.0
6: वर्जन 2.0
7: दिवे एफएम नुव दिहे के मेगाहर्ट्ज दिवे हिंगे मुनिफु फिलवा देनुमुगा अबदुस

रिकॉर्डिंग 11:30 मी मिगडीगे हापरकुन बद्दल कोली अळगट असिस फारो हरदना शाफसियतक मी हावाणी इल्मा हुनर बेनुं कुरा गोते गेमतिं कमा फन्ना सगा फता तरिकया बेहे वजीर हीना वाली द्विताळु वेचे वजीर मिहें विदाळवे गौमी यूनिवर्सिटी गे स्टूडेंट यूनियनों इंतिजाम को गें अड्डू सिटी गा कुरियदा अड्डू बोड फंडियार तकुर फंड गे हंदाणी वादागे तट्टा बाबा वाहक देक्कुमगे मुबाराता अर्शे हुसैन शरफुद्दीन के हंदाणी वादाग तट्ट बाबा बहुस मुबारा फेशमुगे रस्मियात शरफेर को देवा मुबारात के बैवेरिना मुहादब कुरव्वा वाहक फुल दक्कवमु फन्ना सगा फता तरकया बेहे वजीर हीना वाली द्विदाळवी मी फद मुबारा तकुन दरिवरुंगे की बैगा अशगण्वाय देनी शख्सियतेगे की बैगा हुरुन लाजिम कुरा सिफत के कमशा आदि दरिवरुंगे अमिल्ल नफ्सु के साबित कंदम हट्टम वेस दस्को देवे कमा तेदुविर कमुगे मैं सिफया साफ तेदु मावलू माता इल्मी बुरदं हुरी वाहक तका लोबी कुरुं फद एतक कमे दरिवरुंगे की बैगा अशगणगें दियुमगे इतुरुं मिफद मुबारा तवगे सबबुं गाउमगे मुस्तक्बल उजालावे हारुदना दिवेहि दरिं तकें उफेदिगें दा कमविस फजीर विदाळवे मिमोगे फुरतम दुवहुं फेशिगें अमल कोरं फेशि एग्गम दतुरु फतुरुगे गानूनुगे दशुं मिहातना हस्तेका फंसास्ती मिहका फियवळु अळाफि मि गानूनु एकुलवा लाफावणि राज्येगा मागुमतीगे रक्का तेरिकं कशवर कुरुंगे गोतुं फुलहुं विदाळवि मि गानूनुगे दशुं मिमोगे फस्वण दुवहा हमया गानूना खिलाफ वि हस्तेका फंसास्ती मिहका फियवळु अळाफावा कमा आदि सत्येक अड्डि हतिं उळंदु फुलहुंगे बेलुंगे दशगें गुस्वावा कमा मि गानूनुगे दशुं पियवळु अळमुं दायरु मिमहुगे मिहातन 40 फस एक्सीडेंट हिंगा फावा कम तफास हिसाब तकुं दक्का दिवे जुआनुन फतुरवेरिकम गे दायराइन तमरीना तजुरिबागे फुरसदत फुळा कुरुमट्टका फतुरवेरिकमा मदनी उदुहुंतका बेहे वुजाराया जुआनुन बारवेरकुरुमा कुळिवरा हशियुकमा बेहे वुजाराया देमेदु फहुमनामायका सोयकोफी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम गे मकसदकी राज्येगे एम्मे बोडसिनातुं जुआनुन अमली तमरीनुदी कामयाब मुस्तक्बलक मगफैकोतिनु मे एब्बसुमगे मुद्दतकी फस्सहरुदुस जुआनुं बारवेर कुरुमा कुळिवरा हशियुकमा बेहे वुजारागा बेबी रस्मियातुगा मि एब्बसुमगा फतुरवेरिकमा बेहे वुजारान सोयकुरेवी वजीर मुहम्मद अमीन आदि जुआनुं बारवेर कुरुमा बेहे वुजारान सोयकुरेवी वजीर अब्दुल राफियु हतरु रशेग्गा मिस्की बिना कुरुमा बीलन हुशेळुमगे फुर्सत माली वुजारान अलुं हुळुवा लाफि माली वुजारं बीलं हुशेळुमगे फुर्सत अलुं हुळुवा लाफावणी गाफताल मडवेया गाफताल फरस मातडागे इतुरुं ता उमदुआ ला मुखालादुगा मिस्की बिना कुरुमगे मश्रु मि मश्रु तवगे बीलमा कुरिमति लेवेनी बिनारा गेदुरवेरिकमा उम्रानी तरक्किया बेहे वुजारागे इमारा कुरुमगे अमली मसेक्के कुरा फरातकुगे गवायदुगे दशुन रजिस्ट्री फावा फरातक फलस्तीनगे गज़ागा वेरिकं कुरा हमास जमातुं हतें अक्टूबर देहास तेवी हुगा यहूदी दौलत अमास को दिन कुल्ली हमलायायकु यहूदींगे निर्पवेरी दौलतुगे सलामती निजामगे बालिकशिकमा नाकामयाबी वणी मुळि दुनिया बेसारवेफा अस्करी गोतुन्ना जासूसी गोतुं होदा फावा कोरियरुं दकुन्ना बिरुदेक्कुमगे सियासत एगाउमुगे रय्यतुना रक्का तेरिकं कशवर कोद्देवेने कम देक्केमुं ऐदेक्कुमकी हागीगते नुं कमवणी हामवेफा मियाई साबु मिगड़ी के खबर दर्नवाणी मुनि देंग एम में वह अमान रखा तेरी दुहक कंगे दी वस्सलाम अलैकुम

9 के मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम मी गडी का कुरे मिदनी लंच ब्रेक मी शो का मी वाह का दकालनी टेक्नोलॉजी के गोतुं कुरिया राफवा कुरियर मका बेहे गोतुं मी दु मी वाह का दकालनी तरक्की कुरे मुंदा उदु हे कारता का कुले गोतुं देन तिमा बेटा रटे ही मी उलंद तं हिंगनी बोडती बैटरी सिस्टम ताकुं मी के सबबुल निबेने फायदा तव गे तेरेगा बिमुगावा मगुतव गे बदलगा वैगे मगुता बेनुं कुरुमुं कारोबारु बडु सिटी दवगा दातुरु फतुरं हेदवा वगुतु वरपडा कुडवेगें दाने इमर्जेंसी हालतुगा बाली मीहुं उफुलुमशा मुदा उफुलुमा मी वरं अवस वसीलत कववाने करंट दुववा एचकववुमुं विह गैस बेरु कुरुं हुट्टुमकं अन्नाने दे मेदुगे दुनियेगा मी वरं मुहिम्मु एक कंता विह गैस बेरु कुरुं हुट्टुमा वरगिनमसकेतके वेस कुरेवेमुं अन्ननी

0: Lunch break.
1: Lunch break.
2: Lunch break.
1: Lunch break.
0: Lunch break. Lunch break.
3: Delay FM, nu adhi hai 1 megahertz.
4: Film a music ge duniya finalu ma taiyar ta?
5: Ehenka ma wanda ma popcorn hoda taiyar ve. Delay FM ge munipu film ge daira ge khas show MFS aahar pataka.
4: Box office ge M hit film ta ge maulu mat.
6: इराई महर की रकम अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है
5: एम में फोगे ट्रेलर तक का बाला लंग एम में कमुदाने सीरीज तक आदि हफ्ता के तारी
7: मंथ्स इयर्स डेकेड्स ईच लाइफ अ फेडेड लेसर कॉपी
4: ऑफ द पॉपकॉर्न थिएटर इन एम में कमुदा फिल्म तो गे खास मंजर त ओएसटी बैंक हंदा नत्ता नु लेवे लव तक आती बेफळुंगे मकबूल तारिया काय को नु आदि हसिकुन पर
8: कलीले सास फोन को बले हां मिहिर फोन नीकम
9: बिस्नाल बला वाफिर वेते नति कम हुट्टाला
4: MFS komme haftaeku hukuru de hoge mendur fo de chahair
5: hama ekani nu adhi hai ke megahertz dive hai fm
10: chandai dekha akha baaju ma hamre rakha ye dekh kare manwa taiya thakka
11: MFS
12: abada fahi lavata kaeku maaji ge tiriya
13: ಇತ್ತಕುಂ ಜಾಗಹೋದಿ ಎಮ್ಮೆ ಗಯಾವಾ ಫಣ್ಣಾನುಂಗೆ ಹಂದಾಂತ ಕಾಯಕು
12: ಹಂದಾಂತವಗೆ ತೆರಿಯ ದತುರುಕೊಲ್ಲಮ

लव्वा फावा मलायक तुंगे तेरे तिंहा हुं त्य बैमी हुंगे विर रसकलांगे त्य बैमी हुन्ना मदद देवुं त्य बैमी हुन्ना का नुफ दे है ये।

0: ए हिनितुम वुं मुली उमर देमिगेंदां एने इंतिहाय बेनुमे ए हितुगे मुरादु हासिल कुरिविदानि हिये
1: अरे वेचे मिका मानुविस ना हुना अरे वेचे मिका मानुविस ना हुना दस कुरा एनु निसाने शाकु वेताने साने तुरा सवाल कुरम फशाफिया उरी हाँ कमे वे साम कुरम मजबूरुवाने अरे बेर बिनु तो कोताक अरे बेर मेनु जाने तो कोताक किने तमी वानी
0: एंदु के हेडबोर्ड का बोलु के फुक्की पा मडू मडून जहाले बने शक्का वाहुम के तूफान के तेरे अंग नफसु किल्लितानी कम के बिरु ही वो माय को यूट्यूब होलवाल मफ़ाहो दारु हिंग अलवाली ए दारुस अडू हम फेशु माय को हिता लुयल लिबें फेशी कम के इहुसास कुरे बुने आयरा या निदुनी वेस दारुस अडू हंग होफ़ाई

0: ए खियालों ए कणिवेस बयां को रंदती हिंखम जो में लिबिगें दी ए
1: शल वी
0: गेगे मैतुरा दिमायं इशारे कोल्लमों जोहन पुन्ये जोहन के सुवाल आयराय नगै गने बुने जोहन के फातों आयरा हिंगै गती अधिवेस एफहरु बगीचायं अवस नजर इते मुन्ने एरु बयां को रंदती शौर तकें आयरा के लोलु गवी ए एने के मुस्तगबल जोहन ना कुलवा लेवमों कुरिं ए हिता वेरिविकें दनी उफा विरिकमे फोनी उम्मीद थके नमविस मिफहर एने के हिता तूनु रिहुमें इउसास कुरेवने वगोती उफले के राहतक वेदानती हि बिरुकन नम फेशी ए इहुसास तं मूनुं फाळवियनु देन आइरा हिनितुं वेली ए कुरियं अळमुंदिया कोम्मे फियवळकायकु नफ्सुगे हमजेहुं गेल्लिकें दाहें विस हीवी ए